टोनी हसन श्रीलंका संगीत सा हिंदी जनप्रिय संगीत विशेष स्थानीय जनाद रेट आदरणीय गायक ओगे सतुट मत नर्तन में वेदिका सजीवीकरण गायन शैल्य निशा ओगे बाइला सा अनिकुद गीत लोक प्रसिद्ध नाम बहुत पत्तुना इदस नम से हत्यावत असुअ दशके बाइला संगीत नव शब्द सा सजीवीकरण गिना कलाकार ओगे गीत वोट तिबू सरल सतुट सा जनता व समग्र सृजु संबंध निशा ओगे गायन विशेषात्वगत उत्सव विवाह सा सतुट अवस्था वल्दे ओगे गीत अदत अनिवार्य वादने वेनो सिंगल संगीत जनप्रिय कल फाइनियंस अतरट ओगे गी नमद अतुलत वेनो टोनी हसन गे संगीत अदत जीवमान सतुट नर्तने सा श्रीलंकीय श्रासे मतक करवना अमरणीय हांडा

एंटन रोड्रिगो श्रीलंका बायला सा जनप्रिय संगीत विशेष स्थान गत जन हृदय आदरणीय गायक ओगे सतटुमत नर्दनमय वेदिका व सजीवीकरण गायन शैली निशा ओ बायला लोके अमरणीय नामक बहुत पत्तुना हत्या व असु दशके बायला संगीत नवरसज्ञना जनप्रिय गायक मेनिके मालिकावे सीनिमल्ली मल मेनिके वेनी जनप्रिय बायला गीत ओगे नामे समग संबंध उना ओगे गायन शैल्य सरल सतुटु सा जनताव समग सुदु संबंधक एतिकल विलासिताव किं पिरीति बुना उत्सव विवाह अवस्था वलदी पवा ओगे गीत अनिवार्य वादिने उना एंडन रोड्रिगो संगीते अदत जीवमान सातुट नर्तने सा श्रीलंकीय बायला रसे मतक्रवण अमरणीय हंडाक